0: जी बहुत बढ़िया, ठीक है, शुक्र है उसका काल पर खुदाई करी दा
1: जी
0: सुने दा जी। बिल्कुल मैं खबर सुन रही, राजन सैनी साहब भी गलबात कर रहे थे, जो जो भी सुन रहे थे, तो
1: जी
0: बिल्कुल हालात जड़े है गया, नाजुक भी है गया, लेकिन बस वाला जरूरत तो हुई है ना, भी कहना मतलब इस इन जड़ा है कहना मतलब हालात न सही कमांड देने वास्ते लाजम एक जड़ा कमांडर जरूर अगे अगे आवे,
1: जी
0: या शख्सियत अगे आवे जड़ा है जिदे ना सारा आमना मान हो जावे, लेकिन हालात बिल्कुल पूरी तरह सही नहीं है। तो
1: बिल्कुल
0: चलो देख रहे हैं, साडिया दुआवां हमेशा नाल हैगा, लेकिन लाजम चाहिदा हैगा अपने
1: जी
0: वतन दे विच जड़ा है अमना मान होवे।
1: बिल्कुल
0: ते बाकी जड़ा है देखो कोई भी चीज हैगी है वीर भविंदर जी, हमेशा एको जी नहीं रहिंदी हुंदी, जे आपां कहिंदे ना भी लवी हुण दिन चढ़ गया तो दिन ही रहना हैगा सदा,
1: जी
0: ये निजाम है कुदरत दा, जे दिन है तो उस तो बाद रात भी तो हुंदी हैगी है ना, हर एक चीज नूं टाइम दित्ता,
1: जी
0: जो चीज भी अपना जिहड़ा हैगा लसन ने बनाई जां अकाल पुरख ने बनाई उहनूं टाइम भी दित्ता होया,
1: जी
0: दिन है तो उहनूं टाइम दित्ता, रात है तो उहनूं सूरज दी ड्यूटी लाती, देख लो उहने उहने उह अपने दिन टाइम ते आउंदा हैगा, जाता है
1: बिल्कुल
0: तो रात में जो है अपनी है ना ड्यूटी
1: जी
0: निभा है, इसी तरह हर चीज का निजाम है एक चलता पाया, तो
1: बिल्कुल
0: लेकिन सही जो है सही ढंग के नाल सब चले, दिली दुआवां है
1: जी
0: और तुहाडा भी बहुत बहुत सल्यूट है तुहानू भी,
1: थैंक यू जी
0: कि
1: थैंक
0: तुसी
1: यू
0: जो है देखो ए नाल जो है एक जो है कि जागृति पैदा होंगी हैगी आ,
1: जी
0: ते सारे जड़े है कहना मतलब पता लगता है सारा जो है, ते बाकी गल्लां बातां भी हुंदियां, टॉक शो भी है, सब ओहदे नाल सारा
1: बिल्कुल
0: जिहड़ा हैगा सामने आ जांदा
1: जी
0: जी। तो मैं एक सॉन्ग लै के आया अज, ते चलो
1: जरूर जी
0: माहौल दे हिसाब दे नाल जे तुहाडी इजाजत होवे तां
1: जरूर
0: मैं
1: जरूर
0: ओहनू
1: जरूर
0: गुनगुनाया
1: साझा
0: करां
1: करो जी,
0: जी।
1: साझा करो जरूर
0: जी
1: जी,
0: जी
1: वेलकम
0: जी
1: है जी
0: जी हिंदी हिंदी दे विच सॉन्ग है जी, मैं शुरू करदा
1: जी

0: खुफिया खुफिया खुफिया खुफिया खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। चंदरी कड़ी सानू दिल चो, लिया किसी होरी नू वसानी। खुफिया रे पोटी आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी। खुफिया रे पोटी आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्यानी।
1: वाह
0: कसमां तू खादियां सी लख नी, एक भी ना तेरे कोलों फूकी नी। वेख के तू ओथे मैल माड़िया, भुल गई अज साडी चुकी नी। कसमां तू खादियां सी लख नी, एक भी ना तेरे कोलों पुगी नी। देख के तू ओथे मैले माड़िया, भुल गई अज साडी चुकी नी। ओथे दे व्यापारियां ने मोलिया, तेनू चांदी दियां छिलड़ां वखानी। चंदरी काढ़ी सानू दिल चो, लिया किसे होरे नू वसानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्याहानी। खुफिया रे पोटिया आई लंदनों, जिथे तू कराया जाके ब्याहानी। शहर दे बहाने डुब जानिए, साडे कोलों मारगी उड़ारियां।
1: वाह जी,
0: दिल दियां साडियां तू सदरां, पैरां थले

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी, जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी, एहसास

0: चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू। चल अड़िया हाथ फड़िया पा तुर चलिए चन दी सैर नू।
1: मम्मी विशेष जी दी रचना चन दी सैर दे नाल ही असी इस काम्य फल दा इथे ही समाप्ति करने आ। अगली काम्य फल तक हरवंत सिंह नूं दिओ आग्या। हरवंत सिंह वल्लों एक बार फिर सारे श्रोतियां शायरां नूं आदाब नमस्कार सत श्री अकाल कुदरत खैर करे अलविदा आमीन प्यारे दोस्तों।

0: क्या बात है जी, बहुत
1: यू
0: खूब
1: सो
0: मानव
1: मच
0: जी, हर बार की तरह बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद जी,
1: शुक्रिया
0: बा
1: जी,
0: कमाल सच्चाई तुसी पेश कीती है जी। दो रोटियां ती गल है
1: शुक्रिया।
0: ते दो गेठ जमीन चाहिदी है, बस हर चीज पासे दो ही
1: वाह
0: चाहिदियां ने जी।
1: वाह, क्या बात है,
0: जी
1: शुक्रिया वीर भविंदर जी, जींदे
0: थैंक
1: बसते
0: यू
1: रहो,
0: जी,
1: थैंक
0: थैंक यू,
1: यू सो मच,
0: शुक्रिया, सत श्री अकाल
1: शुक्रिया।
0: जी। लो दोस्तों, ऐसी जी मोहम्मद जी जुड़े सी ते गलबात करके गए ने, बंदा पता नहीं कहां तो दौड़ा भज्जा फिरदा है इन्ना, ते खानियां तो सिर्फ दो रोटियां ने, ते वो दो रोटियां कमा लीए ते वो ही बहुत है, वो भी हक सच दियां। वो तस्वीर याद आउंदी है जदों बचपन दे विच देखदे हुंदे सी गुरु नानक साहब दी, ते ये दो रोटियां उन्होंने हाथ दे विच फड़ियां हुंदियां सी, ते एक रोटी दे विचों खून निकलदा सी, ते एक रोटी दे विचों दुध जिहड़ा सी नुचड़दा सी। पर वो जिहड़ियां तस्वीरां भी हौली हौली जिहड़ियां ने, चलो सिख जिहड़ा धर्म है जां सिख पैरोकार ने जिहड़े इन्हां चीजां दे विच बिलीव नहीं करदे, पर किते ना किते वो तस्वीरां दे विचों सिख्या जरूर मिलदी सी कि हक सच दी खाणी है चाहे घट खा लईए, ते मड़क दे नाल तुरना चाहे दो पैर घट तुर लईए, ते आखर दे विच जाणा कुछ नहीं नाल है, बंदा कट्ठा करदा रह जांदा है, ते अपनी जिंदगी दा समां जिहड़ा वो इसे तरह व्यर्थ जिहड़ा कढ दिंदा है, ते जिंदगी पता नहीं की कमाउण की आया। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੀਮਾਨ ਬਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾਲ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜਾਣੀਆਂਚਾਲ ਜੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅੱਜ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੀਮਾਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ਵਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ

0: ठीक है।
1: नौवीं। अच्छा, एक आदत शुरू तो भाई की पेपर रीडिंग है, न्यूज़पेपर दूसरी शुरू तो पढ़ दे रहो, बुक्स वगैरह जीके दी बुक्स है या होर कोई
0: अच्छा
1: कंपटीशन दी
0: अच्छा
1: बुक्स
0: अच्छा
1: है। ये हमेशा आदत साढ़े घर से सी कि मंथली एक मैगजीन साढ़े को आंदी सी, पेपर साढ़े को तीन लैंग्वेज दे आंदे
0: ये
1: आंदे
0: प्लस
1: सी।
0: पॉइंट्स
1: ए प्लस पॉइंट, ए
0: मिल।
1: ग्रूमिंग दी जिहड़ी मैं गल आख रहा
0: अरे
1: सी
0: हाँ
1: कि
0: ठीक
1: तिन्ने तिन्ने लैंग्वेज दे पेपर साढ़े घर च आंदे सी, हिंदी
0: ठीक है
1: पंजाबी इंग्लिश तिन्ने शुरू तो ही बचपन तो ही पढ़ते सी। ते फिर 9th 10th होया तो बायो च इंटरेस्ट चला गया कि चलो ठीक है बायो पढ़ के देख लेंगे। 10th दे विच जदों क्लियर होया ते आई हैड प्रिपेयर्ड माय माइंड कि बायो लेनी है कि डॉक्टर जड़ा है बनना है, किसी ने थोपिया नहीं,
0: अच्छा,
1: सपना
0: ठीक है ठीक
1: पेरेंट्स
0: है।
1: का सीगा बट उदों थोपिया नहीं गया कि तुसी बनना है, उदों तक माइंड
0: आप
1: बन
0: भी
1: गया
0: उसी सोच
1: बिल्कुल
0: अपना इन्हों अपना सपना बना लिया।
1: बिल्कुल
0: ठीक है
1: कि बनना हैगा, मेडिकल ले ली,
0: जी।
1: नाल थोड़ा मैथ्स इंटरेस्ट सी, नॉन मेडिकल वैसे ऑप्शनल रख ली
0: और क्या
1: उदों
0: बता, मतलब तुसी ट्रैक छड्डिया कोई नहीं, दोनों भी नाल ही
1: उन्हना दिनों
0: रखे।
1: जो जेडे मेरे फ्रेंड से वो एनडीए का पेपर देने जा रहे थे,
0: हाँ जी
1: मैं
0: हाँ
1: कहा
0: जी
1: कि चलो पता नहीं डॉक्टर बनाएंगे नहीं बनाएंगे,
0: ठीक
1: पेपर
0: ठीक हाँ जी
1: दे चुके थे कि एनडीए का पेपर भी देने चले गए।
0: हाँ जी।
1: रब दी मैथ्स दोवें जेडे हैं उदा प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, डॉक्टरी का क्लियर हो गया
0: क्या
1: उस
0: बताएं,
1: वेले। मतलब चीज़ां वही हैं कि जरूरी नहीं कि तुम दोवें एक साथ
0: सही
1: टेकअप
0: ट्रैक पे
1: करो,
0: जा रहे थे तुसी।
1: बट तुसी जड़ा बच्चा उस स्टेज से होंगे 11वीं 12वीं दे सामने ये ऑप्शन होंगे ने बैंकिंग दे,
0: जी।
1: जिस किसी को लगता है कि बैंकिंग से जाना है वो कॉमर्स के थ्रू अपनी तैयारी उस तरह की कर सकता है, किसी को लगता है सीए बनना हैगा मैं,
0: सारा
1: किसी को
0: जोड़ा
1: लगता है
0: बिल्कुल
1: इंजीनियरिंग करना है। दैट इज द स्टेज जो 9th 10th दे लिए अपना एक प्लेटफॉर्म तैयार करते हो, तो प्लस वन
0: बिल्कुल
1: दे टेक ऑफ करते हो, उस तो
0: जी जी
1: बाद भावें सीए बनो, इंजीनियर बनो,
0: हाँ
1: टीचर
0: जी
1: बनो,
0: जी
1: अपने डॉक्टर बनो, आर्मी से जाओ, पुलिस से जाओ, वो ताड़ी जड़ी है उस वेले थोड़ा डिसीजन लेना जरूरी होता है। तो दोनों जदों मेरे क्लियर हो गए तो बेटर वॉज कि चलो ठीक सपना वो जाना सेगा
0: हाँ जी हाँ
1: मेडिकल
0: जी
1: दे, मेडिकल सब्जेक्ट ले लिया
0: बिल्कुल
1: पहले
0: बिल्कुल
1: अटैम्प्ट। और सिविल सर्विसेज इस करके बनया क्योंकि जिम्मे मैं दस्या से कि जीके शुरू तो अच्छी सी,
0: हाँ जी
1: पेपर रीडिंग बहुत चंगी एक आदत जो बच्चे च पै सकती होवे।
0: हाँ जी
1: और मैं अपना जो सिविल सर्विस का करियर मैं टोटली मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आफ्टर ग्रेजुएशन मैं सिविल सर्विस की तैयारी की थी, वो जरा बेस सेगा थ्रू न्यूज़पेपर रीडिंग मेरा बचपन तो
0: शुरू
1: ही
0: तो बनिया
1: तैयार
0: है
1: हो
0: सर
1: चुका सेगा।
0: बिल्कुल।
1: एंड उस आदत के कारण जरा से सिविल सर्विस आने का डिसीजन होया कि चलो ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बेस
0: जी
1: चंगा
0: जी
1: बनया
0: जी
1: होया
0: बिल्कुल
1: सेगा।
0: ठीक है
1: तो किसी बच्चे ने अगर सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो एक बहुत ही बेसिक स्टेप जरा प्रिलिमिनरी स्टेप मैं आखाँगा कि पेपर रीडिंग की आदत जो बाद भी बन जाए, इवन व्हेन यू आर इन कॉलेज उदों भी बन जाए, तो ये बहुत ही चंगी आदत है। तुसी
0: जी
1: आस
0: जी
1: पास की अपनी सराउंडिंग्स नाल देश दुनिया की खबरों तो भी तुसी रहते हो
0: अपडेटेड रहना बिल्कुल
1: अपडेटेड रहते हो, तुसी अपने शहर की खबरों तो भी अपडेटेड रहते हो, तुहाडे शहर च
0: जी
1: की
0: जी
1: हो रहा है, तुहाडी कंट्री च की हो रहा है, दुनिया च की हो रहा है।
0: बिल्कुल
1: एंड सिविल सर्विस से जाओ या ना जाओ बट एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन जरा तुसी उदे विच बन सकते हो।
0: बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी। वो पहली शर्त है, वो तो चाहिए चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तुसी उधर सिविल सर्विस दे विच भी एन वधिया शाइनिंग कलर्स दे नाल उधर अपीयर होए ते मुड़ के हुण तुसी बतौर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट सेवावां दसूहा दे विच निभा रहे हो, ते इसे ये करियर तुहाडा अग्गे बहुत दूर तक जाण वाला है। ते ये जिहड़े बच्चे आ साडे भविख आ देश दा, तुसी एक उहनां दे लई रोल मॉडल हो। जदों तुहानूं मिलदे आ, बच्चे भी तुहानूं मिलदे होणगे स्कूलां 'च तुसी जाते हो, जां कई वारी बच्चे तुहाडे कोल आउंदे ने, किस तरह दा तुहानूं ओवरऑल एक उहनां दा प्रभाव तुहाडे उत्ते पैंदा है कि ये जिहड़ी पीढ़ी आ ये किन्नी क जागरूक आ, किन्ना क बच्चा जिहड़ा है किस लैवल ते खड़ा है, लग जांदा पता कि ये जिहड़े मोस्टली कॉलेज गोइंग बच्चे आ, स्कूल गोइंग बच्चे आ, इन्हां दा कैलिबर कितने क खड़ा है अज दे देखा जाए जो ओवरऑल सिनेरियो जनरल।
1: मैनू नहीं पता, मुझे इस तरह लगता है कि इंडिया के जीन्स कुछ इस तरह की गल है, जेनेटिक मटीरियल अपने देश का इस तरह का है कि बच्चे
0: जी
1: जड़े है इन्ने ज़्यादा टैलेंटेड ने, नवी जड़ी पनीरी आप कहें
0: हाँ
1: नवी
0: जी हाँ जी
1: जनरेशन ना जड़ी आ
0: हाँ
1: रही है
0: जी हाँ
1: वो
0: जी
1: इन्नी ज़्यादा टैलेंटेड है, उन्होंने देख के सानू लगता है कि उस उम्र से असी कुछ भी नहीं सके इन्हों के सामने, जो
0: क्या
1: असी
0: बात
1: इफ यू कैन ट्रैवल बैक इन टाइम से उन्होंने कंपेरिजन करिए असी कितने भी स्टैंड नहीं करा। बेसिकली अगेन सारी गल घूम फिर के उत्ते आ जाती है कि जे इस इन्हों बच्चों को प्रॉपर असी गाइडेंस देिए, उन्होंने प्रॉपर ग्रूम करिए, ये बच्चे कुछ भी कर सकते हैं।
0: जी।
1: अपना भारत देश सब तो दुनिया का नंबर वन देश बन सकता है जे बच्चे अपने टैलेंट का सही तरह ना यूज कर लैन। मैं
0: बिल्कुल
1: बच्चों को मिलता स्कूलों से भी मिलता कॉलेज से भी मिलता,
0: हाँ जी हाँ जी
1: बड़े हादसे वाली गल है, वो कहेंगे कि जी असी तो वाग बनना है, कई बच्चे जो सिविल की तैयारी शुरू करते हैं
0: अच्छा
1: उन्होंने
0: जी
1: दिमाग से भी यही गल होंगी, साढ़े भी दिमाग इनफैक्ट जो अं प्रिपेयर करे से यही गल होंगी।

जड़ तो पुटते पिछे कौड़ी पजदा फिरदा पता न कोई पलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए जदों समय दा चक्कर चलदा ए लेखा लिखिया मेट न सकदा हो लेखा लिखिया मेट न सकदा

चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, शरणजीत प्रेम हुण विकदा ए, शरणजीत हुण प्रेम विकदा ए, नैणे हंजू सच लिखदा ए, तुर दरगाहे लेखा देना तख्त हिजरे दा हलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए, जदों समें दा चक्कर चलदा ए।